0: What makes the Shah Rukh Khan Madhuri Dixit pairing so iconic? Listen to this.
1: जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ. क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था?

0: यश चोपड़ाज मूवी दिल तो पागल है, the highest earning Bollywood movie of the year 1997, and it swept the awards that year too. Shah Rukh Khan got Best Actor and Madhuri Dixit Best Actress for their roles as Rahul and Pooja. Stay tuned for songs from Koila and Hum Tumhari Hai Sanam on our blockbuster playlist of Shah Rukh and Madhuri songs. Next up, Shah Rukh Khan plays the emotionally wrecked lover Devdas Mukherjee and Madhuri Dixit as...
1: आपके घर का आईना हमारी सूरत न देख सका, नुकसान हो गया आपका।
2: हर दुख आने वाली सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा।
3: वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंग आईया ले रही है, वाह वाह।
2: यूं नजर की बात की और दिल जुदा के, हम तो समझे थे पुत्र, हाथ तो धड़कन सुना गए।
3: देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि जैसे चंद्रमुखी है जैसे चमत्कार भी,
2: जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं।
3: जैसे चमत्कार जैसे चंद्रमुखी, देखा बना गई ना वो जैसे क्या कहते हैं।

0: नाराज हो मुझसे?
1: नहीं तो
0: फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती?
1: बात तो कर रही हूं।
0: क्या परेशानी है? मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूं कि परेशानी क्या है।
1: कोई परेशानी नहीं है।
0: परेशानी है, बहुत परेशानी है। परेशानी यह है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। मैं आज यहां पर यही कहने आया हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बस एक बार कह दो, फिर देखो कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा।

लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: It's hot and happening.
1: Hi, Nicholas. This is bringing back the good old days at the ABH Fair from Videsh Motilal of Reservoir Hills.
2: अरे हम तो के अभी एक कहानी सुनाऊंगा. हाँ हाँ एक कहानी सुनाऊंगा. अरे हम जब एक दिन रास्ता पर चला था तो हम एक लड़की के घर पहुंचा था. हाँ पहुंचा था तो हम वहां पर गया था और देखा था उस लड़की बहुत सोच में था. तो हम पूछा है ये लड़की काय के तू सोच में है रे. तो लड़की बोला हम मालूम नहीं है कि हमारा माई बाप तो कहाँ गया है. तो हम बोला अरे पगली हम तो क्या बताता है तेरा माई बाप तो कहाँ गया थे. उस लड़की के पास बहुत सुंदर नाम था. उसके नाम मोनिका.